0: ऊपर काली है, ऊपर काली है, ऊपर काली है।
1: ਪਿਛਲਾਹੇ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀ ਹੈ ਪਿਛਲਾਹੇ।

गुरु बोलो जी। जिन्ना सिंगा सिंगणिया ने धर्म हित शीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल चराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा ले कुर्बानी।

एक ओंकार सत नाम कर्ता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद चक्र चिहन अर भरन जात अर पात नहन जिहे रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत केहे अचल मूरत अनभउ प्रकाश अमितोज कहिजे कोट इंद्र इंद्राण साहे साहान गणिजे तिर भवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बण त्रिण कहत तो सर्ब नाम कथ कवन कर्म नाम वर्णत सुमत अब राखो दास पाठ की लाज जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की हरनाख शफारे कर आज फुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी शीनत बस्तर दीन बहुसाज सो दामा आपदा ते राखेयन गान का पढ़त पूरे तेह काज श्री सतगुर सो परसन कल जुग होए राखो हो दास पाठ की लाज ज्यों जान हो त्यों राख हर प्रभ तेरे केते गनो असंख अवगण मेरिया असंख अवगण खते फेरे नित प्रत सद भूलिए मोह मगन बिकराल माया तो प्रसादी भूलिए लोक करत बिकार बिखड़े प्रभ नेर हों ते नेरिया बिनवंत नानक दया धारो काड भव जल फेरिया दर्शन प्यासी दिन सरात चित बहु अन दिन नीत खोल कपट गुर मेलिया नानक हर संग मीत सुख टल गुर सेविए एहन ससहज सुभाय दर्शन पर से गुरु के जन्म मरण दुख जाय होवे सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों चटी तुद डिठे सचे पात शाह मल जन्म जन्म दी कटी
सज्जन सच्चा पातशाह सिर सांदे जिस पास बैठियां सोहिए सवना दा विसाहु सज्जन सच्चा पातशाह सिर सांदे जिस पास बैठियां सोहिए सवना दा विसाहु सतनाम

तनासरी शांत महला चौथा कार पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर जियो कृपा करे ता नाम त्याय जियो सतगुर मिले सुभाए सहज गुण गाय जियो हर जियो कृपा करे ता नाम त्याय जियो सतगुर मिले सुभाए सहज गुण गाय जियो गुण गाए बिगसै सदा आनंदिन जां आप साचे भावै अहंकार होमै तजै माया सहज नाम समावै आप करता करे सोई आप दे ता पाइए हर जियो कृपा करे ता नाम त्याय जियो अंदर साचा नेहो पूरे सतगुरु जियो हों तिस सेवी दिन रात मैं कदे न विसर जियो कदे न बिसारी अन दिन समारी जा नाम लई ता जीवा श्रवणी सुनी ता इहो मन तृपत गुरमुख अमृत पीवा नदर करे ता सतगुर मेले आन दिन बबेक बुद्ध विचरै अंदर साचा नेहो पूरे सतगुरै सत संगत मिले बड भाग ता हर रस आवै जियो आन दिन रहै लिव लाए ता सहज समावै जियो सहज समावै ता हर मन भावै सदा अतीत वैरागी

बिन नावै को साथ न चाले, पुत्र कलतर माया तोहिया। दूजे पाए दुख होए, मन मुख जम जोहिया जियो। कर किरपा लिहो मिलाए, महल हर पाया जियो। सदा रह कर जोड़, प्रभ मन पाया जियो। प्रभ मन भावे ता हुक्म समावे, हुक्म मन सुख पाया। आन दिन जपत रह दिन राती, सहजे नाम त्याया। नामो नाम मिली वडियाई, नानक नाम मन पावई। कर किरपा लिहो मिलाई, महल हर पावई जियो। नामो नाम मिली वडियाई, नानक नाम मन पावई। कर किरपा लिहो मिलाई, महल हर पावई जियो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तनासरी शांत महला चौथा, घर पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर जियो कृपा करे ता नाम त्याई जियो। सतगुर मिले सो पाए, सहज गुण

0: पौड़ी वड़ी हूँ वड़ा पार तेरा मर्तबा, रंग प्रंग ने एक ना जापन करतबा, जी अंदर जियो सब किस जान ला, सब किस तेरे वास तेरा कर पला, तेरे कर नंद वदाई दुद कर मान मत ते अपना आप जर सर्व कला भरपूर दसें जत कता नानक दासन दा गै बिनवता।
1: श्लोक पवन गुरु भाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दुआ दाई दाया खेल सगल जगत चंगे आईया।

नानक दास दास दया कै बिन मरा। तेरा जी तेरा नाम सत है, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी की फतेह।

दुख दारू सुख रोग मया जा सुख ताम ना होई। तू करता करना मैं नाही जाहो करी ना होई। बलहारी कुदरत वस्या तेरा अंत ना जाई लख्या रहा। जात में जोत जोत में जाता कलकला भरपूर रहा।

जब लो नहीं पाग लीलारी उदय, तब लो प्रमती फिरती बहुतायो। कल कोर समुद्र में बूढ़त थे, कब हो मिट है नहीं रे पछताया। तत् विचार यह मथुरा, जग तारन को अवतार बनायो। जपियो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ न आयो। गुर पारस हम लो मिल कंचन होया राम, ज्योति ज्योत मिलाए काया गाड़े सोहया राम, काया गाड़े सोहया मेरे प्रभ मोहया। क्यों सास गिरास विसारिया, अदृष्ट गोचर पकड़िया गुर शब्दी। ओ सतगुर कै बलिहारिया, सतगुर आगै सीस भेट देओ। जे सतगुर साचे भावै, आपे दया करो प्रभ दाते। नानक अंक समावे, सतगुर आगै सीस भेट देओ। जे सतगुर साचे भावे, आपे दया करो प्रभ दाते। नानक अंक समावे, सुख टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसय गुरु कै, जन्म मरण दुख जाय। होवै सिफत खसम दी, नूर अरसोह कुरसोह चटिया। तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटी है। सज्जन सच्चा पातशाह, सिरशाहां दशाह। जिस पास बैठिया सोही है, सबना दावी साहो। सज्जन सच्चा पातशाह, सिरशाहां दशाहो। जिस पर

0: गयो तुहारो द्वार, बाहें गहे के लाज वस, गोविंद दास तुहार।
1: सगल द्वार को साड़ के गहे तुहारो द्वार,

हम अवगुण पर एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिख बिख खाई, माया मोह परम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाट कीरत की, गुर रामदास रखहु सरनाई। एक अरदास पाट कीरत की, गुर रामदास रखहु सरनाई। सो कहो टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुभाय, दर्शन परसै गुरु का, जन्म मरण दुख जाय। होवै सिफत खसम दी, नूर अरसह कुरसह चटिया, तुद डिठे सच्चे पातशाह, माल जन्म जन्म दी कटिया, सज्जन सच्चा पातशाह, सिर साहां दा साहु, जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दा वेसाहु, सज्जन सच्चा पातशाह, सिर साहां दा साहु, जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दा वेसाहु। सत नाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, तनासरी महला पहला, जीवा तेरा नाय, मन आनंद है जियो, साचो साचा ना

साचो साचा नाओ गुण गोविंद है जीओ, गुर ज्ञान अपारा सृजनहारा, जिन सृजी तिन गोई, परवाना आया हुक्म पठाया, फेर ना सकै कोई, आपे कर विखै सिर सिर लिखै, आपे

नाम बिना नाही को बेली बिखला दे सिर पारा। हुक्मी आया हुक्म ना बूझा हुक्म सवारण हारा। नानक साहिब शब्द सिंजापै साचा सिरजणहारा। भगत सोहे दरबार शब्द सुहाया जियो। बोला है अमृत बाण रसन रसाया जियो। रसन रसाए नाम तिसाए गोरे।

अमरा पद पाया आप गवाया विरला ज्ञान विचारे नानक भगत सोहन दर सच सच के व्यापारी भूख प्यासो आथ क्यों दर जाए साजियो सतगुर पूछो जाए नाम त्याए साजियो सच नाम त्याए साच चवाए गुरमुख शब्द पछाणा दीनानाथ दयाल निरंजना अन दिन नाम वखाणा

मन मारे नानक नाम महारस मीठा तृष्णा नाम निवारे। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्म हस्त काया रखिया परमेश्वर है आत्म रखिया गोपाल स्वामी थन चरण रखिया जगदीश्वर है सर्व रखिया गुरदयाल है पै दुख विनाशन है भगत वशल अनाथ नाथे सरण नानक पुरख अचुत है बिलावल महला पंजवा। ताती वावना लगाई पार ब्रह्म शरणाई चौगिरद हमारे राम कार दुख लगे न पाई। सतगुर पूरा पेटिया जिन बणत बनाई राम नाम औखद दिया एका लिवलाई रहाओ। राख लिए तिन रखनहार सब ब्याद मिटाई कहो नानक कृपा पई प्रभ पए सहाई। सोहिला राग गौड़ी दीप की महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद जय कर कीर्ते आखिए करते का होए विचारो तित कर गावहु सोहिला सिवरिहु सिरजनहारो। तुम गावहु मेरे निरभउ का सोहिला हौ वारी जित सोहिला सदा सुख होए रहाओ। नित नित जीअड़े संभाली अन देखेगा देवनहार तेरे दाने कीमत ना पवै तिसदा ते कवन सुमार। संबत साहा लिखिया मिलकर पाव तेल देहो सजण सीसड़िया जे होवै साहिब स्यो मेल। कर कर एहो पाहुचा सदड़े नित पवन सदन हारा सिमरिया नानक से देह आवन राग आसा महला पहला। छेओ कार छेओ गुर छेओ उपदेश गुर गुर एको वेश अनेक। बाबा जय कर करते कीरत होए सो कर राख वडाई तोए रहाओ। विसोए चसया कड़िया पहरा थिती वारी माह हुआ सूरज कोर उते अनेक नानक करते के केते वे सराग तनासरी महला पहला। गगन मै थाल रब चंद दीपक बने तारिका मंडल जनक मोती धूप मल आन लो पवन चबरो करे सगल बन राय फूलंत ज्योति। कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती अनहता शब्द वाजंत भेरी रहाओ। सहस तब नयन नर नयन है तोहे कौ सहस मूरत नना एक तोहे सहस पाद बेमल नान एक पाद गंध बेन सहस तब गंध इव चलत मोही। सब मह जोत जोत है सोए ते सो दै चानण सब मह चानण होए गुरसाखी जोत प्रगट होए जोत इस भावै सो आरती होए। हर चरण कबल मकरंद लोभित मनो अन दिनो मोहे आही प्यासा कृपा जल दे नानक सारिंग कौ होए जाते तेरे नाए वासा। राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर बहु भरिया मिल साधु खंडल खंडा हे पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मन हर लेव मंडल मंडा हे कर साधु अंजुली पुन वड्डा हे कर डंडौत पुन वड्डा हे रहाओ। साकत हर रस साधना जाणिया तिने अंतर होमै कंडा हे ज्यों ज्यों चल है चुभै दुख पाव है जमकाल सह हे सिर डंडा हे। हर जन हर हर नाम समाणे दुख जन्म मारण पव खंडा हे अविनाशी पुरख पाया परमेसर बहु सोभ खंड ब्रह्मंडा हे। आम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डा हे जन नानक नाम आधार टेक है हर नामे ही सुख मंडा हे। राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा करो बिनंती सुनो मेरे मीता
संत टहल की बेला इहा खाट चलहु हर लहा आगे बसन सोहेला औद कटै दिन सरै नारे मान गुरमिल काज सवारे रहाउ एहो संसार विकार संसे महतरयो ब्रह्म ज्ञानी जिस हे जगाए पिया वाहे रस अकथ कथा तिन जानी जा कौ आए सोई बिहाजहु हर गुर ते मनहे बसेरा निज कर महल पावहु सुख सहजे बहुर ना होए गो फेरा अंतर जामी पुरख बेदाते सरधा मन के नानक दास एह सुख मांगा मोकौ कर संतन के तूरे अंतर जामी पुरख बेदाते सरधा मन के पूरे नानक दास एह सुख मांगा मोकौ कर संतन की तूरे।

0: कोट जन्म के दुख गवायो, जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दिवायो। सर्ब सुख हर नाम बढ़ाई, गुर प्रसाद नानक मत पाई।
1: श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत, दिवस रात दाई दाया खेले सगल जगत, चंगियां बुरियां वाचे धर्म हदूर, करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर, जिनी नाम

ओंकार सतनाम करता पुरख निरभाओ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुरप्रसाद आसा महला पहला। वार श्लोका ना श्लोक पी महले पहले के लिखे टुंडे असराज की तुनी श्लोक महला पहला।

0: करी न होई। बलिहारी कुदरत वसिया तेरा अंत न जाए लखिया रहाओ। जात मह जोत जोत मह जाता अकल कला भरपूर रहया। तू सच्चा साहिब शिव सवालियो जिन कीती सो पार पिया। कहो नानक करते किया बाता जो किश करना सो कर रहया। महला दूजा
1: जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण है। खत्री शब्दं शूर शब्दं शूदर शब्दं प्राकृत है। सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने पेयो। नानक ताका दास है सोई निरंजन देव। महला दूजा एक कृष्णं सर्व देवा देव देवा तय आत्मा। आत्मा वासुदेव है जे को जाने पेयो। नानक ताका दास है सोई निरंजन देव। महला पहला

0: दृष्ट धरत तम हरन दहन अग पाप पर नासन शब्द सूर बलवंत काम अर क्रोध बिनासन लोभ मोह वश करण शरण जाचक प्रत पालन आत्मरत संग रहन कहन अमृत कल ढालन सतगुरु कल सतगुर तिलक सत लागे सो पै तरै गुर जगत फिर नसी अंगरों राज जोग लहना करै।
1: सदा कल्लिव रहे करं शिक्षा चारै दुरम स्पूर जो निवै खवे कस विमल विचारै एह तत जान्यो सर्वगत लख बड़ाणी सहज पाए संचयो किरन मत कल बाणी गुर गम प्रमाण तै पायो सत संतोख ग्रहाज लयो हर परस्यो कल समुल वै जन दर्शन लहने पायो मन विश्वास पायो गहर गोद दियो गर नास्ता नठ्यो अमे अंतर्गत पियो रिद विगास जाग्यो लख काल तरी जुगंतर सतगुरु सहज समाध रव्यो समान निरंतर उदारो चित दारिद हरण बिकंते कल मल त्रसन सद रंग सहज कल उचर जस जंपो लहन रसन।
2: नाम ओख नाम आधार अर नाम समाध सुख सदा नाम निशान सो है रंग रत्तो नाम स्यो कल नाम सुर नर बो है नाम परस जिन पायो सत प्रक्यो रव लोए दर्शन परसे गुरु कै अठ सठ मजन होए दर्शन परसिया गुरु कै अठ सठ मजन होए
3: सच तीरथ सच इशनान अर भोजन पाओ सच सदा सच पाखंत सो है सच पायो गुरु शब्द सच नाम संगति बो है जिस सच संजम वरत सच कब जन कल वखान दर्शन परस्या गुरु कै साजन परवान जिस सच संजम वरत सच कब जन कल वखान दर्शन परस्या गुरु कै साजन परवान।
4: अमै दृष्ट शुभ कर हरे अग पाप सकल मल काम क्रोध और लोभ मोह वश करे सबे बाल सदा सुख मन वसै दुख संसार खोवे गुर नव निद दरियाओ जन्म हम कालक धोवे सो कहो टल गुर सेविए एहनस सहज सुपाए दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाए सो कहो तल गुर सेविए एहनस सहज सुपाए दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाए।
5: देवपुरी में गयो आप परमेश्वर पायो हर सिंहासन दियो श्री गुरु ते है बैठायो रहस्य क्यों सुरदेव तोहे जस जय जय जंपे असुर गए ते पाग, पाप तिन पितर कंपे, काटे सो पाप तिन नर हो के, गुर रामदास जिन पायो, छतर सिंहासन प्रथमी, गुर अर्जन को दे आयो, छतर सिंहासन प्रथमी, गुर अर्जन को दे आयो।

0: अर्जुन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ ना आयो जपियो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ ना आयो।
1: कद समुंदर पे रूप प्रगटे हर नाम उधारन बसे संत जिस दै दुख दरिद्र निवारन निर्मल भेख अपार तास बिन अवरना कोई मन बच जिन जानियो पयो तै समसर सोई तरन गगन नव खंड मह ज्योत स्वरूपी रहो परे पन मथुरा कछ भेद नहीं गुरु अर्जुन पर तख हरे सतगुर खेमा ताणिया जुग जू समाणे अनपो नेजा नाम टेक जित भगत अगाणे गुरु नानक अंगद अमर भगत हरे।

मेहमान तेरी टेक अवर सियाण पाबिर थिया प्यारे राखन का तुम एक मेहमान तेरे टेक मेरे प्यारे मेहमान तेरे टेक अवर सियाण पाबिर थिया प्यारे राखन का तुम एक रहा सतगुर पूरा जे मिले प्यार सो जन होत निहला गौर की सेवा सो कर प्यारे जिसनो होए दयाला सफल मूरत गुर दियो स्वामी सर्व कला पार पूरे नानक गुर पार ब्रह्म परमेश्वर सदा सदा हजूर सुन सुन जीवा सोए तिना के जिन अपना प्रभ जाता

नानक के बेनंती स्वामी तेरे जन देखण पावा वड़ पागे से काडिया प्यारे संत संगत जना वासो अमृत नाम आराध्य निर्मल मन होवे परगासो जन्म मरण दुख काटिया प्यारे